चाका गुर एक ध्यान जेको कह कर विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दया का भूत संदोख था प्रख्या जन सूत जेको बुझे होवे सचियार धवल उपर किता भार धरती होर पर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात नंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाब लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया किता हुए किता तान सवाल रूप केती दा जाने कौन कूता किता पसाओ इको कवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ उदरत कवन कहा विचार वारण जावा एक वार जो तुद भाव है शाही भरी कार तू सदा सलामत निरंकार संख जाप संख भाओ संख पूजा संख तप ताऊ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास संख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती असंख दातार संख सूरमोह भक्त सार संख मोहन लिभ लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारण जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार संख मूर्खांत घोर संख चोर राम खोर संख अमर कर जाहे जोर संख गल वड हत्या कमाए संख पापी पाप कर जाए संख कूड़ियार कूड़े फिराहे संख मिले शमाल भाकाए संख नंदक सर करह भार नानक नीच कह विचार वारण जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार संख नाम संख थाम गम गम संख लो संख है सर भार हो अखरी ना अखरी सा लाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बान अखरा सर संजोग बखान जन लिखे तै सर नाही जब परमाए तब तपाही जीता कीता तेता नाऊ बिरना वै नाही को थाऊ कुदरत कवन कहा विचार वारण जावा एक बार जो तद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार प्रियात पैर तन दे पानी तोता उतर सके मूत प्रीति कपड़ होए दे सा बोन लिया हो तोए परिय मत पापा कह संग धुपै नावै कह रंग पुनी पापी आखन नाही कर कर करना लिख लै जाहु आपे भी जापे काहू नानक हुकमी आप हूं जाहू तीर तब दै दान जी को पावे तलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगा तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैन गुण कीते भगत न होए स्वास्थात बाणी ब्रह्माओ सत सुहां सदा मन चाओ कवन सुवेला भक्त कवन कवन थत कवन वार कवन सिरती माहु कवन जित हुआ।

सुरस दा की सुध कर्मकंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तन मैं राम रहया भरपूर तिथै जी तू सीता महमा माहि दाग रूप न कथने जाहि नाहु मरण ठागे जाहि जन कै राम वसै मन माहि तिथै भगत वसै किलो करह न सच्चा मन सोय सच खंड वसै निरंकार कर कर विख नदर निहाल तिथै खांड मंडल वर भंड जी को कथा दांत न अंत तिथै लो लो आकार जब जब हुकुम तब तब कार विकै विकसै कर विचारु नानक को कथना करड़ा सारु जद पहारा धीरज सुनियार हरण मत विधा थियार भाव कलागन तपता भांडा भाव अमृत तटाल कड़िया शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तनकारु नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस राधु दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक दुकाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल एको अंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्री मुख बाग पातशाह दसवीं छपै संत प्रसाद चक्कर चहन बरन जातर पात नैन जे रूप नांगा देख पे को कर सकत के चल मूर्तां अनुभव प्रकाश मितोज के जय कोटिंद्र इंद्रां शाह शाह अनगणित जय त्रिभुवन मिहि बहु सुर नर सुर नित नित बंतरण कह तु तब सर्व नाम कथा कावन कर्म नाम वरण समत भुजंग प्रजात छंद नमस्तुअं काले नमस्तुअं कृपाले नमस्तुअं रूपे नमस्तुअं नूपे नमस्तुअं भेके नमस्तुअं लेके नमस्तुअं काय नमस्तुअं जाय नमस्तुअं गंजे नमस्तुअं भंजे नमस्तुअं नामे नमस्तुअं ठामे नमस्तुअं कर्म नमस्तुअं धर्म नमस्तुअं नाम नमस्तुअं ताम नमस्तुअं जीते नमस्तुअं बीते नमस्तुअं वाहि नमस्तुअं ढाहि नमस्तुअं कर्म नमस्तुअं भरमे नमस्तुअं वाहि नमस्तुअं ढाहि नमस्तुअं नीले नमस्तुअं नाद नमस्तुअं शेदि नमस्तुअं गाद नमस्तुअं गंजे नमस्तुअं भंजे नमस्तुअं उदारि नमस्तुअं बारि नमस्तुअं सुवेकै नमस्तुअं नेकै नमस्तुअं भूते नमस्तुअं जूपे नमस्त नर कर्म नमस्त नर भरमे नमस्त नर देशे नमस्त नर पेशे नमस्त नर नामे नमस्त नर कामे नमस्त नर धाते नमस्त नर काते नमस्त नर धूते नमस्त भूते नमस्त लोके नमस्त सोके नमस्त नर तापे नमस्त थापे नमस्त धर्माने नमस्त धाने नमस्त गाहे नमस्त बाहे नमस्त दरबर्गे नमस्त सर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त सुजोगे नमस्तं रंगे नमस्तं भंगे नमस्तं गमे नमस्त धर्मे नमस्तं जलाशरे नमस्त निराशरे नमस्तं जाते नमस्तं पाते नमस्तं वाजवे नमस्त सजवे देशं देशे नमस्तं भेसे नमस्त निर्धामे नमस्त निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्त देवे नमस्तं भेवे नमस्तं जन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वभावणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्त दयाले नमस्त वरणे नमस्त मरणे नमस्त जरार नमस्त करतारंग नमो सर्वधंदे नमोस्ता बंदे नमस्त साके नमस्त बाके नमस्त रहीमे नमस्त करीमे नमस्त अनंते नमस्त महंते नमस्त सरागे नमस्त सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वभोग नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगी नमो भोग भोगी नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चात्री संतो प्रसाद रूप है नूप है जू है भू है लेख है भेख है नाम है काम है अधे है भे है जीत है पीत धर्मान निधान तरवर्ग सर्ग नील है नाद है जे है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है भरण है गंज है पांज है चूज है चांज है मीख है रफीक है तंद है बंद है निर्भूज है सूज है काल है जाल है लाह है जाह है अनंत है मंत लीक नरसलीक नरलाम है शाम है गाम है जाम है भूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है भरम है जीत है पीत है बाह गाह है मान है निधान है नेक है फिर एक है भुजंग प्रजात छंद नमो सर्वमान्य समस्त निधान नमो देव देवे भेखिय भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथ्य अनुसंगी परमात्य नमो भान भाने नमो मान मान नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी नाम समस्त स्वरूप प्रभंगी परमात्य समस्त विभूते कलंक बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश परम रूपे नमो जोग जोगे परम सिद्धे
ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਾਤਾ ਨੋ ਲੋਕ ਮਾਤ।

कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र भेष है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेकी, कि सर्वत्र पेकी, कि सर्वत्र काजा, कि सर्वत्र राजा है, कि सर्वत्र शोक है, कि सर्वत्र भूख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र भेष है, हे सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है, कि सर्वत्र जाप है, कि सर्वत्र थाप है, कि सर्वत्र पान है, कि सर्वत्र मान है, कि सर्वत्र इंद्र है, कि सर्वत्र चंद्र है, कि सर्व गलीम है, कि परम फीम है, कि आकुल लाम है, सा कलम है, कि हुसन लो वजू तो मामल रुजू है, सो सलाम है, सलिका तो मनाम है, गनी मल सुकस्त है, गरीब लो प्रस्त है, बुलंद है, मखाना है, जमी तो माम है, जो तम यल तो माम है, रुजू निधान है, रिफल जी मर जा कर यकीन है, अनेक कुल तरंग है, भेद है, भंग है, अजिजल निवाज है, गनी मुल्क राज है, निरख स्वरूप है, तर मुक्त भूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सदुक सुधा है, सदैव स्वरूप भेदी अनूप है, समस्त उपराजा सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव काम है, निर्भास स्वरूप है, गाद है, अनूप है, वंगाद रूप है, ना स्वरूप है, नंगी है, नामे, त्रिपंगी, त्रिकामे, त्रिवर्ग, त्रिबाध्य, गंजी, अगाध्य, सबंग सर्वभाग्य सर्वानुराग्य सर्वभोग स्वरूप है, शय जय सूत नरकं प्रणाश है, प्रीतल प्रवास नरक्त प्रभा सदा भंग सदा भोग स्वरूप प्रजोगित अनूप है, नरक सदा भक्त प्रभा नरक स्वरूप प्रजोगित अनूप है, चातरी शांत भंग लिंग भी का लेख है, भर्म कर्म नाद जुगाद जय है, वह पूद दूद नाद नास उदास तंद बंद भक्त भ्रक्त नास प्रकाशन चंदन सुनंत लख देख लेख भेख टागा नित जात जात जर प्रशंत प्रसाद सर्वंत सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता सवल शंतो प्रसाद नव नरक नाशिस्तव प्रकाशनंग स्वरूपे भंगं भूते प्रमात्म प्रमाति सदा सर्वसाथ्य गा स्वरूप निर्वाद भूते अनंगे नामे त्रिभंगि त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रन पुत्रन सुतरन मित्रन तातन मातन जातन पातन साकन श्रीक मितो मे कसद प्रभा जह अजा भगवत छंदो प्रसाद के जाहर जूर के हाजर जूर में सुसलाम समसल कलाम साहिब माग गुसल चिराग कामल क्रीम कराज क्रीम गुरु जी दहंद कराज करहंद हरिमल कुमार लक्ष्मण जमाल गनी मुल्क राज गरीब निवाज हरि फल सुकन सुलभ कर लंग लंक प्रनाश समस्त निवास गंजन गनी मर जाय करीम समस्त जबाय साहिब करंग नरक प्रनाश है बहस्तल निवास सर्वल गवान है विश्वान है तमाम अल्तमी जय समस्त जी जय परम परमीश समस्त जी सह देसुल लेख है मिसुल भेख है जमी और जमायमी कुल ईम है करीमल कुमार लग जुरुत जमाल चलंग प्रकाश है मित्तो सुभाष गाजब स्वरूप है मित्त भूत है मितो बसंग्या प्रभा चलंग नांग मितो अभंग मद भार चंदो प्रसाद मन मन प्रणाम गण गण मुदा मर भर गाजन नर पर भाजन गण प्रणाम मन सलाम हर नर खंड भर नर मंडन भवनाश मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदा मन सजांग आसन भंग उपमा पार गत मितो दा जल थल मन दस बस भान जल थल मान दस बस बेअन भवनाश थर थर तुरासु आ जान बाहु कसदाऊ ओंकार आदि कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुरबरा कालू कर कर प्रणाम चितरण नाम अंशज गाता जज नाम बात अंज अंज गात अंज बात अंठ भंडार अंठ ठ पारा डीठ धर मत ठीठ कर मन ब्रण नान तो दाता मान धर बोल मना शंतो प्रसाद अरुणालय है अरकालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोवारण है धृत के तरण है जाक्य करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंपर है सर्वंकर है सर्वपाश सर्वनाश है गुरुनाकर है संग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कल खंड से परतीवर है करुणाकर है जपा जाप तपा ताप कृता कृत है अमृता अमृता अमृता अमृता करुणा कृता कृता कृता तरणी धृताम तिस्वर है परमेश्वर कृता कृत अमृता अमृता अजबा कृता अमृता अमृता नर नायका कल कायक संपर करुणालय नृप नायक सर्वपायक पापांजन रंजन है रिपतापण जप जापण अकलंकृत सर्वा कृत कर्ता कर है अर्ता हर है परमात्मा सर्वात्मा तुम वास है जस के रासु है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगी नमो ज्ञान ज्ञानी नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
नम युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र नादंग भूत लंका रूपे लंकर लंके नमो आशास नमो बांग बांके भंगी स्वरूपे नंगे न

कपी चीतन राक्ष माया चिंत भवन मन परिवह मारा राम ना नाम बिना कैसे उत्तर सुपारा देहे बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा वासा हज हमारी गोमती तीर जहाँ बसै पितंबर

0: गावो हिंदू तुर्क दो समझावो आशा श्री कबीर जियो के पंच पदे नाव दो तुके पंज को अंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर जियो भूली मालनी है ओ सतगुर जागता है जियो रहाओ
1: ब्रह्म पाती बिस्मदारी फूल शंकर देव तीन देव प्रतख तोरे रे करे किस ही किसे हो पाखान गंड लै मूर्त किन्ने देके छाती पाओ जे ए मूर्त साची है तो गाढ़न हारे खाओ पांत पहतार पालसी कर करा कसार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालन पुली जग पलाना हम पलाने नाही का कबीर हम राम रखे कृपा कर हर राय आसा बार बरस बालपन बीते बीस बरस कश तपना कियो तीस बरस कश देव न पूजा फिर पछताना बिरद पियो मेरी मेरी करते जन्म गयो साहिद सुख भजंग बलायो राम सुके सरवर पाल बंदा बे लूणे खेत हथवार करे आया चोर तुरंत लै गयो मेरी राखत मुगदहिर फिरे चरण शेष कर कंपन लागे नैनी नीर सार बहे जेहवा बचन सुधने निकसे तब ते धर्म राय की आस करे हर जियो कृपा करे लिवलावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलदिया नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अन्न तन कछुए लै ना गयो आई तलब गोपाल राय के माया मंदर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाट पटंबर काहू पलंगन वारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अखेरक बाद न कीजे रे मन सुकिरत कर कर ली

तो प्रीतन तोरो हम तुम बीच पियो ने कोए तुम्हें सो कांत नारे हम सोए। कहत कबीर सुनो रे लोए अब तुमरी प्रतीत ना होए आसा कोरी को काहू मरन जाना सब जग आन तनायो ताना राम। जब तुम सुन ले वेद पराना तब हम इतन को तब हम मर्म न जाना सब जग आन तनायो ताना राम। जब तुम सुन ले वेद पराना तब हम इतन को पसरियो ताना ना। तरन आकाश के कर गए बनाए चंद सूरज दो साथ चलाए पाई जोर बात एक कीने ताते मन माना। जुलाए करे अपना चीना कट ही राम पछाना कहत कबीर कर गए तोरी सुते सूत मिलाए कोरे। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावै अंतर मैल जे तीर्थ नावै कहते सब कंठ न जाना ना। लोक पति ने कछु न होवे नहीं राम अजाना। पूजो राम एक ही देवा साचा नावन गुर की सेवा राम। जल के मंजन जेगत होवे नित मेंढक नावे जैसे मेंढक तैसे हुई नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मने बिनारस नरक न पाचियो जाए हर का संत मरे हड़म्बे ता सगली सैन तराए। दिन स न रहन वेद नहीं सतर ता बसे निरंकारा कहे कबीर नर तिसहते आवो बावरे आ संसारा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा बाणी श्री नाम देव जी के एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तस होए माया चित्र विचित्र बिमोहित बिरला बूझे कोए। सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोए। रहाओ जल तरंग अरबे पेन बुदावद जल ते पिने होए। एह परपंच पार ब्रह्म के लीला बिचरते आना होए। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुरे पदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय बिचारी कट कट अंतर सर्व निरंतर के बरे कमरारी। आसा अनिले कुंभ पराई लिए उदक ठाकर को स्नान करो। बयालीस लाख जी जल में होते बीठल पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महानंद करे सदके लाराम। अनिले पूल परोई लिए माला ठाकर के हूँ पूज करो। पहले बास लई है पव है बीठल पहला काय करो। अनिले दुध तराई लिए खीरंग ठाकर को नैवेद करो। पहले दुध बिटारियो बछड़े बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान तनंतर नामा परन वह पूर रिहो सब सर्व पूर रिहो तू सर्व मई। आसा मन मेरो गज जेवा मेरे काते मप मप काटो जम के फासे करो। कहाँ करो जाति कहाँ को पाते राम को नाम जपो दिन राते राम। रंगन रंगो सीवन सीवो राम नाम बिन करी ना जीवो। भक्त करो हर के गुण गावो आठ पैर अपना खसम ते आवो। सोने के सोई रूपे का तागा नामे का चेत हर स्यो लागा। आसा साप कुंच छोड़े बिख नहीं छाडे उदक माहे जैसे बग ध्यान माडे। काहे को कीजे ध्यान जपन्ना तब ते सुध नाही मन अपना राव। सिंह च पूजन जो नर जाने ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे रे चगरा राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चिंसी आसा ते ना पावसे रामा भगते चेत लिए अचिंत मन राखसे। कैसे मन तह तरे गारे संसार सागर बिखे को बना झूठी माया देख के पुलारे बना राव। छिपे के कार जन्म दैला गुर उपदेश पहला संते के प्रसाद नामा हर पेटला।
आसा बाणी श्री रविदास जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिर्ग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख विनाश पंच दुख साध जामै ताकि केतक आसा माधो विद्या हित कीना विवेक दीप लिमिलीना राम तिरगद जोन अचेत संभव पुन

जाए काल फस अवध लागे है कछ ना चले पाए। रविदास दास उदास भज परम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान। आसा संत दूजी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देव देव संत ची संगत संत कथा रासा संत प्रेम माजे दीजे देवा देव दहाओ संत चरण संत चो मार्ग संत चा उलुंग उलंगणे और एक मांगू भगत चितामन जने लिखावो संत पापी सण रविदास पणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही आसा तुम चंदन हम रंड बपरे संग तुम्हारे बासा नीच रूक ते ऊच पय है गंध सुगंध निवासा महदो सत्संग सरन तुम्हारी हम औगुण तुम पकारी राओ तुम मखतूल सफेद सपेलिए सपियल हम बपरे जस कीरा सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मुत पखीरा जाती होचा पाती होचा होचा जन्म हमारा राजा राम की सेवन केने कहे रविदास चमारा। आसा कहाँ पियो जो तन पियो छिन छिना प्रेम जाए तो डर पे तेरो जाना तुझे चरण अरविंद पवन माना पान करत पायो पायो रमैया ताना राम संपत दीप्त पलट माया ताना ता बह मगन होत ना तेरो जाना प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो जाना कहे रविदास छुट बै कवन गोना। आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर जागर जन्म जन्म के काटे का गरा निमत निमत नाम देव दुध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इउ गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले धीर हो फिरत है रहाओ जब कुछ पावे तब गर्द गर्भ करत है माया गई तब रोबन लगत है मन बच कर्म रस कसे बल पाना बिंस गया जाए कहूं समाना कहे रविदास बाजी जग पाए बाजी गर सो मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत तन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमत फिरत बौ जन्म बयान बेलाने तन मन तन नहीं धीरे लालच बिख काम लभद राता मन विसरे प्रभ हीरे रहाओ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपाती जन्म मरन फिर तान्या जगत जगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम पंध परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरुख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन की दिया ध्यान मान मन एक मै प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त काने मुक्त पय जो तस्माए समानी जाकी अछली प्रभ पहचान्या तन्ने तन पाया तरनी तर मिल जन संत समान्या। महला पांजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग नाम दियो मन लीना आंड धाम को छिपरो यो लखीना रहाओ बुन्ना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जलाहरा पियो गुनी गहीरा रविदास रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ सत्संग हर दर्शन पाया सहनाई बतकारियां ओ कर कर सुनिया हृदय बसिया पार ब्रह्म भगता मह गनिया ए विद सुन के जाट रोट भगती लागा मिले प्रथक विसाइया तन्ना बड़ भागा रे चित चित सकीना ध्याल दबोदर भे बेद जान सकोई जे तावे ब्रह्मांड कांड को करता करे सोई राम जननी केरे उदक उदक में पिंड किया दस द्वारा दे आहार अगन में राखे ऐसा खसम हमारा कुम्मी जल महतन तिस भर पंख कीर्तन नाहे पूर्म परमानंद मनोहर समझ देख मन माए
ਭਾਕਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਕਰੈਤਾ ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ ਕਹੇ ਤੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਉਂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ ਆਸਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਉ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਕੇ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ ਰਤੇ ਸੁਖ ਸਖਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ ਬਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਏ ਭਾਰ ਥੀਏ ਰਾਮ ਆਪ ਲੀਏ ਲਾਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਪਰਬਿਤ ਗਾਰ ਪਾਰ ਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਪਨੇ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦ ਗੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀਦੇ ਖੈਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦਗੇ ਆਸਾ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਹੱਲੇ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕ ਮੁੰਝੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਨ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ ਰਾਮ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵੰਜਾਈਐ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ ਸ਼ੈਲ ਲੰਘਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ ਕੰਚਨ ਬੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤਿ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰਿਆ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਵੈਸ ਗਿਆ ਕਤ ਕੁੰਜਾ ਚੇਤ ਟੋ ਸਾਵਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਿਆਲੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗੱਲ ਬਾਹੜੀਆਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇ ਮਨੋਂਡ ਗੜਿੰਦਿਆਂ ਛਿਆ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੜਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਕੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨ ਚਰਨਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਗੁੰਗੂ ਜੇਰਲੇ ਘਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਬਿਨ

मिटी व्याध सर्व सुख भोए हर गुण सदा विचारा अंगीकार कियो मेरे करते गुर पूरे की बड़े आई अब चल नीव धरी गुरे नानक नित नित चढ़े सवाई गुजरी मारला पांजवा।

जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो बिदन खीटी कानी जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़।

जी की एक ही पैमाने अवर जतन कर रहे बो तेरे तैन तेल नहीं कीमत जानी रहाओ अमृत नाम नरमूलक हीरा गुर दीनो मन धानी डिगे न डोले देरड़ कर रहो पूर्ण होए त्रिपतानी ओए जो बीच हम तम

गुरु अर्जन देव पातशाह ने राम सर दे कंडे बिरखा दी संगनी शाह वाले इलाके नू इस महत्वपूर्ण कार्य लई चुनिया। एथे ही गुरु अर्जन देव पातशाह ने श्री सुखमनी साहब दा पाठ उचारिया सी। गुरु नानक देव पातशाह ने जिन्नी भी बाणी आप लिखी सी जा भगत साहिबान तो एकत्र कीती सी, उन्हां ने गुरता गद्दी देन समय सारी बाणी गुरु अंगद देव जी नूं दे दित्ती सी। गुरु अंगद देव जी ने सारी बाणी अपनी बाणी समेत गुरु अमरदास जी नूं ते उन्हां ने अगे गुरु रामदास जी नूं सौंप दित्ती सी। हुण गुरु अर्जन देव जी पास उह सारी बाणी अते अपनी बाणी मौजूद सी। अपने आप नूं भगत अखवाण वाले पीलू काना छज्जू अते शाह सैन भी आए। उन्होंने अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखाउण लई बेनती कीती। गुरु जी ने उन्हां दी बाणी नूं सुनिया ते कहा कि तुहाडी बाणी गुरु नानक देव जी दे आशे ते पूरी नहीं उतरदी सी, इस लई विचारधारा दा फर्क होण करके इस नूं दर्ज नहीं कीता जा सकदा। बाकी पूरी बाणी जिस तरह रागा नूं तरतीब दे के गुरु जी ने लिखवाई एक कविता राही श्रवण करो जी। सतगुर पर उपकार कमाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाया।

चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन तिस जन ना व्यापै। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। पर तन दोख किछ पाप न फेड़े, जम जंदारन आवे नेड़े। तृष्णा अगन रब आप बजाई, नानक उदरै रब शरण आई। उई जन हर स्यों देवे जोर, चरण गहो बको सब रसना। दीजे प्राण अकोर रहाओ, मन तन निर्मल करत क्यारो। हर सिंचे सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपा ते। महा बिखिया ते तोर, आयो